माता का तो गीत है खोला खड़ा खड़ा बोरु उठा देने वा सो मिलन गीत है गायने कराने जब प्यार की से होता है चित्रपट लता मंगेशकर।

मिलंगीत मधुमती चित्रपटे गायनेकराने मोहम्मद राफी तामत में जाना प्रेम सुदुकालू चित्रपटे वाय जयंती माला समग्र दिलीप कुमार तमा मे चित्रपटे रंग पैवे इति अभी तोरा गत्ता ओबे इल्लीमानो मे गीत बहुत दिन क्लिया तिबुना मधुमती चित्रपटे गीत गणना वक ए अतरी मातोरागत नत्तम वेडिबंदिने किल्ला तिबु गीतेट अभी दन सवंदेमु

मिलन गीते जब प्यार किसी से होता है चित्रपट दर्शन से हटे एक गीत में चित्रपट प्रदर्शन है उन्हें मोहम्मद राफी समग्र लता मंगेशकर तमाम मे गीते गायने कराने तो नेक्स्ट लीड फ्रॉम 1996 जब प्यार किसी से होता है उन मोहम्मद राफी मिट लता मंगेशकर।

0: मिलन गीतिया मोहम्मद राफी गाने कराने चित्रपटे दोस्त थी सौंद एक गीते तो जो नेक्स्ट लीड फन मोहम्मद राफी
1: सुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को फिर

मिलन गीते मन्ना डे गायनिकला श्री हारसे विश्व चित्रपटे नेक्स्ट लीड फॉर द फिल्म 300 स्वांसिक फॉर मंडा डे।